0: Hi, Princess. Program gaat wel, ja.
1: Aapse matlab?
0: Have a drink with us, babe.
1: No, thank you.
2: Drive par chalogi?
1: Meri shamat aayi hai kya?
2: नहीं डार्लिंग, हम शहजादों का दिल आ गया है तुम पर।
1: मुझे रानी समझ रखा है क्या? वो लड़की पागल होगी, जो तुम जैसे जानवरों के साथ जाएगी।